ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 3 जुलाई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी शिखर वार्ता संपन्न की। उन्होंने भारत में नई कंपनियां लगाने के लिए करीब 12 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। वार्ता के बाद ताकाइची ने कहा, जापान और भारत एक दूसरे की शक्तियों का लाभ उठाकर सुदृढ़ और समृद्ध बनेंगे। अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनज़र इस तरह का पारस्परिक व पूरक सहयोग बनाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी और मैंने इसी सोच के साथ कई विषयों पर चर्चा की। मैंने साझा लक्ष्यों की पुष्टि की। मोदी ने कहा, अगले 10 वर्षों में हम भारत में जा

पानी निवेश को बढ़ाकर लगभग 100 खरब येन कर देंगे और यहां मौजूद जापानी कंपनियों की संख्या को दुगना कर देंगे। ताकाइची ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के बारे में कहा कि दोनों देश सेमीकंडक्टर और अहम खनिजों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की कंपनियों ने लगभग 130 सहयोग दस्तावेजों का आदान प्रदान किया है। जापान सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए निवास परमिट का शुल्क बढ़ाने से जुड़ा मसौदा जारी किया है। स्थायी निवास परमिट प्राप्त करने का मौजूदा शुल्क 10,000 येन से बढ़ाकर 2,00,000 येन यानी $1,200 से अधिक कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले आव्रजन नियंत्रण अधिनियम में संशोधन लागू किया गया था। निवास वीजा की अवधि बढ़वाने या निवास दर्जा बदलवाने का मौजूदा शुल्क 6,000 येन और ऑनलाइन शुल्क 5,500 येन है। मसौदे के तहत अधिकतम 3 माह के वीजा का ऑनलाइन और ऑफलाइन शुल्क बढ़ाकर 10,000 येन कर दिया जाएगा। 1 साल के वीजा का शुल्क काउंटर पर 33,000 येन जबकि ऑनलाइन 27,000 येन होगा। 5 साल या उससे लंबी अवधि के वीजा का शुल्क काउंटर पर 75,000 येन और ऑनलाइन 65,000 येन कर दिया जाएगा। सरकार शुक्रवार से जनता की राय जानना शुरू करेगी, जिसके बाद वो 1 अक्टूबर को ये मसौदा लागू कर देना चाहती है। न्याय मंत्री हिरागुची हिरोशी ने पत्रकारों को बताया कि जापान में विदेशी निवासियों की संख्या रिकॉर्ड उच्च हो गई है और आव्रजन एवं निवास प्रक्रियाओं का प्रबंधन खर्च बढ़ने की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए हमें विदेशी नागरिकों से इस खर्च का कुछ भार उठाने का अनुरोध करना होगा। टोक्यो में बृहस्पतिवार को कारोबार के अंतिम चरण में जापानी मुद्रा येन में डॉलर के मुकाबले अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसमें कुछ देर के लिए 1 येन से अधिक की मजबूती आई, लेकिन बाद में ये फिर लुढ़क गया। दिन के कारोबार में येन 162 के निचले स्तर पर रहा, लेकिन शाम करीब 4:05 की अवधि में ये बढ़कर 161.1 के स्तर पर पहुंचा और बाद में शाम 5 ये कमज़ोर होकर 161 के मध्य स्तर पर आ गया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के मुख्य कोच मोरियासु हाजिमे ने पुरुष फुटबॉल विश्व कप से स्वदेश लौटने के बाद पत्रकारों से बात की है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत क्षमता और टीम रणनीति दोनों में और सुधार की जरूरत है। मोरियासु टीम के साथ बृहस्पतिवार को जापान लौटे। उन्होंने जापान फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मियामोतो त्सुनेयासु और राष्ट्रीय टीमों के निदेशक यामामोतो मासाकुनी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया। नॉकआउट राउंड के पहले मैच में 5 बार के चैंपियन ब्राजील से 2-1 से पराजय के बाद जापान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। मोरियासु ने कहा कि वे केवल आभार व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व कप के दौरान और टूर्नामेंट से पहले के पूरे सफर में टीम का हौसला बढ़ाने और उसका साथ देने वाले कई समर्थकों की बदौलत ही जापानी टीम डटकर खेल पाई। मोरियासु ने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का सामना करते हुए उन्हें लगा कि जापान में अब तक जो फुटबॉल का विकास हुआ है उसके दम पर वो वैश्विक स्तर पर स्पर्धा कर सकता है। उन्होंने आगे विश्वास जताया कि यदि जापानी टीम इसी प्रकार मजबूत होती रही तो वो अंततः दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन सकती है। जापान की प्रमुख कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को इस साल गर्मियों में रिकॉर्ड बोनस दिया है। तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध होने के 45 साल बाद पहली बार औसत बोनस 10 लाख येन का आंकड़ा पार कर गया। जापान कारोबारी महासंघ खेई दानरेन के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जापान की प्रमुख कंपनियों में ग्रीष्मकालीन बोनस औसतन 10,08,706 येन यानी $6,250 से अधिक रहा। येन के संदर्भ में ये पिछले वर्ष की तुलना में 1.88% की वृद्धि और लगातार 5वें वर्ष की बढ़ोतरी को दर्शाता है। खेई दानरेन ने 500 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली 112 प्रमुख कंपनियों का सर्वेक्षण किया। मोटर वाहन और इस्पात सहित 5 क्षेत्रों में बोनस में गिरावट आई, लेकिन अन्य 14 उद्योगों में बोनस बढ़ा। अलौह धातु क्षेत्र में 18% और खाद्य क्षेत्र में 10% से अधिक की वृद्धि देखी गई। खेई दानरेन के एक वरिष्ठ अधिकारी नित्ता हिदेशी के अनुसार कारोबार अच्छा होने के कारण कंपनियों ने कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा, मासिक वेतन वृद्धि से कुल मिलाकर बोनस राशि भी बढ़ी। नित्ता ने यह भी कहा कि कुछ कंपनियों ने बड़े बोनस शायद इसलिए दिए ताकि कर्मचारी नौकरी छोड़कर ना जाएं। मध्यवर्ती टोक्यो के शिबुया वार्ड के अधिकारियों का कहना है कि कचरा फेंकने से जुड़े नए जुर्माने को लागू करने के पहले ही महीने में 300 से अधिक मामलों में जुर्माना लगाया गया। शिबुया वार्ड ने 1 जून से सड़कों, पार्कों और अन्य स्थानों में कूड़ा फेंकने वालों पर 2,000 येन यानी लगभग $12.4 का जुर्माना लगाना शुरू किया था। अधिकारियों का कहना है कि ये उपाय मुख्य रूप से शिबुया और हाराजुकु रेलवे स्टेशनों के आसपास के व्यस्त इलाकों में फेंके जाने वाले कचरे की बढ़ती मात्रा को देखते हुए अपनाया गया था। वार्ड का कहना है कि उसके कर्मचारियों सहित लगभग 50 कर्मियों ने 2400 घंटे गश्त लगाते हुए 30 जून तक 324 मामलों में जुर्माना लगाया। अधिकारियों के अनुसार इनमें से कई मामले शिबुया सेंटरगाई और दोगेनजाका इलाके के थे और आधे से ज्यादा मामलों में 20 से 39 वर्ष की आयु के लोग शामिल थे। उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादातर उल्लंघनकर्ताओं ने मौके पर ही जुर्माना भर दिया। कचरे की सूची में इस्तेमाल शुदा सिगरेट शीर्ष पर थी और उसके बाद प्लास्टिक की बोतलें व खाली कैंस जैसी चीजें थीं।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK World Japan।
3: This is NHK World। Radio Japan, Tokyo.